तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको बिघन ना को लागै। जाकी प्रभ आगे अरदास, अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याहे। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास है हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरऊ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निधावै ताहे सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके खालसा जी साहिब वलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। पंजां प्यारियां चौहान साहिब जादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडट कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत असीस दित्ते बंद बंद कटाए। खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी केसां सवासां संग निभाई तिन्हां शहीद सिंघां सिंघणियां दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोलबाले बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे। जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दे राखे आप अकाल पुरख। हे अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो। गुरद्वारा श्री ननकाणा साहिब होर गुरद्वारे गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे माण निताणियां दे ताण धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। आप जीआं दी अपार कृपा रहमत दा सदका गुरु गरीब नवाज पिता जी। आप जी दी पावन हजूरी अंदर सोदर शब्द चौंकी कीर्तन उपरंत रहिराज साहब जी दे पाठ होए हन। समुची सेवा निभाउंदिआं होईआं भुल्लां दी खिमा बख्शणी अगो तो सुमत बख्शणी जी। पढ़ी सुनी बाणी दा भाव दर आईआं संगतां दे हिरदिआं ते वसाउणा। आप जी की अपार कृपा बख्शिश का सदका सतगुरु जी आप जी के सेवक परिवार मिनहास परिवार खंगूड़ा परिवारों वरों एक एक श्री अखंड पाठ साहब जी की सेवा प्यार ते श्रद्धा के नाल निभाते हुए सतगुरु जी सेवक परिवार गुरु के लंगर दिया सेवावान आप जी के दरबार विखे सतगुरु जी बाणी सरवण करके आप जी दिया बख्शिशा प्राप्त कर रहे हैं। सतगुरु जी समूह सेवक परिवार की हाजरी कीती हुई सेवा अते समूह संगतां दी हाजरी तिल फुल भेटावां दर प्रवान करनियां जी सब नूं दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नामदान बख्शना। परिवारां विच सुख शांति चढ़दी कला प्रेम इतफाक दी दात कारोबारां विच तरक्कियां बरकतां बख्शणियां। बच्चियां दे सिरां ते मेहर भरे हथ रख के
ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਚਿਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ

शब्द है शुक्र दा, सानू सबनू थोड़ा बहुत शुक्र ते साडे सब दे अंदर ही होएगा, क्योंकि गुरु ने सानू भुले भटके संसार तों बचा के, सड़दे बलदे संसार तों बचा के गुरु ने अपनी गोद विच बिठाया। गुरु ने अपनी मत उच्ची, मत विवेक बुद्ध इतना उच्चा ते सुच्चा ज्ञान, ज्ञान रूप गुरु बख्शिश कीता है। उस ज्ञान दे सहारे जो जींदा है, उस ज्ञान दा फिर शुक्र ते निकलेगा थोड़ा बहुत। ऐसे गुरु दा शुक्र जदों असीं बोलदे हां अंतरे विच, ते सारयां दे गले दे स्केल दे हिसाब नाल सारे माई भाई वीर बजुर्ग बीबियां बच्चे सब, वो ऐसा स्केल है कि सारे बोल सकते। एक बारी बोलदे हां असीं, फिर सारे बोलते।

समाप्ति हो गई है, पर दो शब्द बड़े लंबे लंबे शब्द बोलने फिर कभी सतगुरु ने कृपा की थी। आप जी के चरणों में ये सेवा हो करेंगे, एक दो पंक्तियों का शब्द पढ़ के समाप्ति कर देंगे।

सद्रियो से जनहारम तुम गावो मेरे निरपो का सोहिला हो वारी सुखोय रहाओ नित नित जीरे समालियन देखे का देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कवन समान संबत साह लिखिया मिलकर पावो ते देव सजना सीसरिया जो होवे साहिब से उमेद कर कर एहो पहुंच।

सब मैं जोत जोत है सोए तिस्ते चानन सब मैं चानन होए कर साखी जोत प्रगट होए ज्योतिष पावे सो आरती होए हर चरण कवल मकर।

खंडा है पूरब लिखित लिखे गर पाया मन हाल्य मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पन वड्डा है कर डंडौत पन वड्डा है रहा साकत हर रस साध न जाने आतन अंतर हो मैं कंडा है जो जो चले चुबे दुख पावे जम काल सह से डंडा है हर जन हर हर नाम सुमाने दुख जन्म रन पव खंडा है अब नासी परख पाया परमेश्वर वो सोप खंड ब्रह्मंडा है

प्रसाद चक्र चीन आभरण जात अर पातन हंजेरू रंग अर रेख पेख कुकैन सगत केहे अचल मूर्तेन पा प्रकाश

चौ भई संबत सत्रह साहब निजा अर्ध साहब दीन कहिजा भादरवा सुधी अष्टमी रवा राती सत्तर द्रग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब दे तुमरे तब दे कुवाख तरे नहीं आने हो राम रहीम बुरान बुरान अनेक है मात एक न माने हो सिमरत शास्त्र बेर सब बापीत कह हम एक न जाने हो श्री समान

0: तो नानक भोग करे। महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले तन किया सिगार, सेजै कंत ना आयो एवै पया विकार। महला तीजा तन फिर एह ना आखियन बहन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति तन फिर कही है सोए। पौड़ी पै बिन भगत न हो वही नव न लगै प्यार, सतगुर मिलिया पौ उपजै पै पाए रंग सवार। तन मन रता रंग स्यों हो मैं तृष्णा मार, मन तन निर्मल अत सोहना पेटिया कृष्ण मुरार। पाओ पाओ सब ते सदा सो सच वरतै संसार, श्लोक महला पहला।
1: महला पहला। वाहो खसम तू वाहो, जिन रच रचना हम किए, सागर लहर समुंद सर वेल वर्ष वराहो। आप खड़ोवै आप कर अपीणै आपाहो, गुरमुख सेवा थाई पवै उनमन तत कमाहो। मस्कत लहो मजूरिया मंग मंग खसम दराहो, नानक पुर दर वे परवाह तो दर ऊणा नाहे को, सच्चा वे परवाहो। महला पहला। उज्जल मोती सोहने रत्ना नाल जड़न, तिन जर वैरी नानका जे बुढ़े थिए मरन। पौड़ी हर सलाही सदा सदा तन मन सौप शरीर, गुरसबदी सच पाया सच्चा गहर गंभीर। मन तन हिरदय रव रहे हर हीरा हीर, मन तन हिरदय रव रहा हर हीरा हीर। जन्म मरण का दुख गया फिर पवे न फीर, नानक नाम सलाहे तू हर गुणी गहीर। सलूक महला पहला। नानक एहो तन जाल, जिन जलिया नाम विसारिया, पौधी जाल पराल पिछे हथ न अंबड़ै, तित नवंदै ताल। महला पहला। नानक मन के कम फिटिया गणत न आवई, किती लहा सहम जब बख्से ता धक्का नहीं पौड़ी। सच्चा अमर चलायोन कर सच फुरमान, सदा निःचल रव रहा सो पुरख सुजान। गुर प्रसादी सेवी है सच सब दिनी साण, पूरा तट बनाया रंग गुरमत माण। अगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान, सलूक महला पहला। नानक बदरा मालका भीतर धरिया आण, खोटे खरे परखियन साहिब कह दीवान। महला पहला। नावण चले तीर्थी मन खोटै तन चोर, एक भाऊ लथी नातिया दोए पचड़ियस होर। बार बाहर धोती तुमड़ी अंदर वेसन कोर, साध भले अण नातिया चोर से चूरा चोर। पौड़ी आपे हुक्म चलाए दा सग जग धंधे लाया, एक आपे ही आप लायन गुरते सुख पाया। दह दे से हो मन तावदा गुर ठाकर हाया, नावे नो सब लोच दी गुरमत्ती पाया। तुर लिखिया मेट न सकी है जो हर लिख पाया। सलोक महला पहला। दोए दीवे चौदह है अटनाले, जेते जीते ते वनजारे। खुले हट हुआ व्यापार जो पोचे सो चलन हार। त्रम धर्म दलाल पाए निशान, नानक नाम लहा परवान। कर आए बजी वादाई सच नाम की मिली वड़ियाई। महला पहला। राती होवन कालिया सो पेदा से वन, देहो बग्गा तपै घना कालिया काले वन। अंधे अकली बाहरे मूर्ख अंध ज्ञान, नानक नदरी बाहरे कवे न पावै मान। पौड़ी काया कोटर चाया हर सच्चा आपे, एक दूजे पाए खुआयन हो मैं बिच ब्यापे। एहो मानस जन्म दुलंब सा मन मुख संतापे, जिस आप बुझाए सो बुझ सी जिस सतगुर थापे। सब जग खेल रचायो न सब वरताए आपे, सलूक महला पहला। चोरा जारा रंडियां कुटड़िया दीवान, वेदीना की दोस्ती वेदीना का खान। सिफती सार न जाननी सदा बसै सैतान, गदो चंदन कोलिया पीसा हुस्यो पान। कू नानक कूड़ा कत्या कूड़ा तनिया तान, कूड़ा कपड़ कचिया कूड़ा पहनण मान। महला पहला। वांगा बुरगू सिंगिया नाले मिली कलाण, एक दाते एक मंगते नाम तेरा परवान। नानक जिन्नी सुन कै मन्या हो तिन्ना बिटो कुरबान। पौड़ी माया मोह सब कूड़ है कूड़ो होए गया, हो मैं झगड़ा पायोन झगड़ै जग मोया। गुरमुख झगड़ चुकायोन इको रब रहया, सब आत्म राम पछाणया पौ जल तर गया। जोत समाणी जोत विच हर नाम समया, सलूक महला पहला। सतगुर भीख्या।

परम सत्कारयोग गुरु की साजी निवाजी गुरु प्यारी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी सारे गज बज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जोगो जोगे अटल चावर तखत छत्र दे मालक गुरता गद्दी ते विराजमान जागदी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने बड़ी अपार कृपा रहमत बख्शिश की है जो अज इस पावन दरबार दे विच दो परिवारों का समेल हो जा रहा है। इस खुशी के मौके पर दास खालसा दीवान सोसाइटी गुरद्वारा साहिब सुख सागर के समूह सेवादारा वालों आप दूर नेड़े आए सारे पतवंती सज्जणा का तहे दिलों धन्यवाद अते निघा जी उवाया कर रहा है। ऑन बिहाफ ऑफ खालसा दीवान सोसाइटी गुरद्वारा साहिब सुख सागर I would like to warmly welcome each one of you who came here all the way to bless this beautiful couple who is now sitting in front of Shri Guru Granth Sahib Maharaj. Thank you so much everybody for coming here, for being here as we witness two souls merging into one in the presence of our eternal Guru. So Sadh Sangat Ji, as we are sitting in this darbar with Guru Sahib as the supreme power, so it becomes our collective responsibility to maintain the integrity and decorum of this darbar. So I would like to humbly request each one of you to please remain silent, listen to the kirtan and pay attention. For your convenience and to help you connect more deeply, we've got screens on both sides. For those who can read the Gurbani, please try to read and sing along. And for everybody else, or for those who may not understand the actual words, we've got translations in English too. Sadh Sangat Ji, sab to pehla jaruri benti hai, apne jo niji vichar ne, gallan baatan ne, kirpa karke, unhan nu sankochan di kirpalta karo, chup da daan, bakshish karo. Sade kol subhaag jodi, inna valon khaas taur te benti hai, ki jinna maama kol chote bache ne, unhan de charna vich benti hai, ki please make sure karo, ki bache jede ne, o quiet hon, otherwise, दरबार साहब तो बाहर ले जाके चुप कराए जा सकते हैं। सो ये मेरी बेनती है क्योंकि जोड़ी वालों खास तौर पर बेनती आई सी। मैं क्या जी फिर सानू ना कहो, जोड़ी कहती कोई नहीं साडा नॉलेज दियो। सो जोड़ी वालों बेनती है जी, प्लीज़ रिस्पैक्ट करो। सात संगत जी, जिथे असी अज सतगुरां दे चरणां विच सुभाग जोड़ी के आने वाले भविख के लिए अरदास बेनती करनी है, उत्थे ही असी अपनी झोलियां भी खुशियां ते खेड़ें दे नाल भर के ले जाणियां ने। इस करके जिन्हां गुरमुखों नूं बाणी कंठ है जां बाणी पढ़ सकते हैं वह भी नाल नाल गुरबाणी दे गायन करन। बाकी संगतां वास्ते स्क्रीनां लगियां ने, वह भी फॉलो कर सकते हैं जी। आओ हुण दोनों ही परिवारों की जानकारी दास साहब जी ने सन्मुख रख रहा है। काका जी जसप्रीत सिंह बड़ियाल, सपुत्र सरदार जसविंदर सिंह जी बड़ियाल अते माता जी हरनीत कौर बड़ियाल, परिवार का पिछलेरा पिंड बिहाला डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर पंजाब, अते इस वक्त यह परिवार सरी बीसी का निवासी है। जसप्रीत सिंह दे दादा जी का नाम सरदार हरभजन सिंह जी बड़ियाल, दादी जी माता जीत कौर बड़ियाल हैं। इन्हां दे नाना जी का नाम सरदार हरदीप सिंह जी धामी, नानी जी बीबी सतवंत कौर धामी हैं। सो इसी लड़का परिवार, कमिंग टू द ब्राइड, बीबा जी हरकीरत कौर दयाल, सपुत्री सरदार रणजीत सिंह जी दयाल, माता जी अरविंदर कौर दयाल, परिवार गढ़ शंकर डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर पंजाब तो बिलोंग करता है, ये परिवार भी इस वक्त सरी बीसी का ही निवासी है। हरकीरत कौर दे दादा जी सरदार जरनैल सिंह जी दयाल, दादी जी का नाम माता जसविंदर कौर दयाल है। इन्हां दे नाना जी सरदार हरदेव सिंह जी अटवाल, नानी जी माता अमरजीत कौर अटवाल है। सो इसी दोनों ही परिवारों की संखेप रूप में जानकारी हुण साध संगत जी आरंभता की अरदास होगी, जिस विच केवल सुभाग जोड़ी अते इन्हां दे जो माता पिता हैं अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर के हाजिरी लवाउणगे। बाकी साध संगत जी आप जी दे चरणां विच बेनती है, प्रेम सहित अपने स्थानों पर सजे रहो। सो आई एम गोना आस्क जसप्रीत सिंह, हरकीरत कौर एंड देयर पेरेंट्स, वेयर एवर दे सिटिंग, प्लीज स्टैंड फॉर द अरदास। जिथे जिथे बैठे हो अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाण। अरदास ही सेवा निभा रहे ने ज्ञानी हरबंस सिंह जी, हैड ग्रंथी गुरुद्वारा साहिब सुख सागर, उपरंत सतगुरां दा मुख आ ज्ञानी सुरेंद्र सिंह जी आप जी नूं सरवण करवाउणगे। आओ प्रेम सहित हाजिरी लवाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।

आनंद अरुगय सम दर्शी पूर्ण संजोग आय न जाई डोले कतनाई जा कई नाम बसे मन माई।

पंजवाई करण कारण करी म सरपत पार ही अल्लाह लक अपार खुद खुदाई वाट भी समान ऊन भगवंत साई काल कर अवरे आसव ताई राव

कीर्ति पाय नारायण नर हर दयाले रमत राम कटक पादे भक्त साबुनी ठाई लीला किश लखी जाए मेहर दया कर करणहार भक्त बंदगी दे सृजनहार कौ नानक गुरु खोई ब्रह्म एक लोह पा ब्रह्म राम कली महला।

राजा मलको अंत काल में नारायण सुधियाई जागत को जोगी सुरभा सुखद क्षण में पाई नायन गुरु नानक जाप नायन गुरु नानक विद्या धर्म कौन गुज की ना नानक विद राम का देखो वेदांते दीना राम कली मोहल्ला नोमा साधु कौन कुजुते अब की जय जाते दुर्बसल बिना से राम पतमान पी जय रहाऊ मन माया में उर्जरे है बुझो नहीं किसी ना कौन नाम गुरजा।

0: मंदाकुनी वे जोगता कान बड़ा के काजे भोगता
1: शरण तुम्हारिया
0: करे लहाऊं
1: कादू
0: कमते नानका के गुरका के
1: यो
0: तारी वर्दे भूतो संसारी ना दूता रंगा जो रह समाय

0: प्रसाद सुख सहज
1: एको जमी मने में एक ही
0: प्रसाद हस्त कर चल है प्रसाद संपूर्ण फल
1: हो जाता मंगी सब कुछ बल्ले पाए मन रसग रास प्रभु एको एक दिहाई अमृत नाम दान
0: प्रभु त्याग पाया जाए
1: उड़वागी संत जन मन उठा आई
0: जागो जय
1: जल समय राव रे आस जागोई नाई
0: प्रभु को मूला मनो
1: नाम दे आई न मुजरा नान खजो
0: जय पर साध तेरा
1: दुर्खवाला मारे से कौन जे दुर्खवाला दे बनन बहन
0: कार्य पूरे
1: तेरा अंग के सम उजला जिनो तेरा अंग निर्मी होने

0: फिर तो प्रभु आया प्रयाता सरना
1: मालिकोड़ा महला पंजा
0: नानक की प्रभु बिनती अपनी लाई राष्ट्रपदी
1: एक हिन में था भवताव दाग खड़पन करने हार जिता की अपार जना प्रादान देदतार हर सरनायो दास तेरा प्रभु
0: अपार मेरी सर्वा पूर सदा सदा प्रति मावा सदा सदा प्रति तुम्हें त्यागा

राव की दृष्टा महान सुख होए हर स्पावे बिरला कोई निचा ख्या से जन कृपा ने पूर्ण पुरख नहीं दुला ने सुपर परे प्रेम रसरा नुपर्या चाव साथ कर संग परे सर्नियां

0: पूरा जग नाओ
1: प्रसाद हर नाम
0: नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ
1: छड़ाई जेते
0: अष्टपदी
1: ते हर मुग्ध कराए मेरे सतगुरु
0: पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म।